0: a day before the protest. He had previously filed a defamation suit over the allegations against him and had even secured an injunction in the case. Meanwhile, LOP Rahul Gandhi joined Ankita Bhandari's parents protesting at India Gate, with the Congress questioning the timing of the appointment. The Uttarakhand government, meanwhile, says it acted swiftly from arrests within 24 hours to life sentences for all three convicts in the case in the trial that concluded in 2025. After the parents' insistence, a fresh CBI case was filed earlier this year.
1: हैरानी की बात यह है, आप कठुआ से शुरू कीजिए, हाथरस पे आइए, बिल्किस बानो पर आइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आइए और अब दुष्यंत कुमार पर आइए, दुष्यंत कुमार गौतम पर आइए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी आरोपी के साथ खड़ी हुई मिलेगी। जो बलात्कार का विक्टिम है, मॉलेस्टेशन का विक्टिम है, जिसका मर्डर हो गया, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नहीं नजर आती।
2: He is being shielded by whom?
1: Well, who else do you think will shield him? The topmost people, Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah are the only ones shielding. इस सरकार में और किसी की चलती है क्या? यही तो दो हैं जिनकी चलती। अब हमें यह समझना है कि किसका दबाव है, कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है कि आपको आनन फानन में इन्हें लाट साहब बनाना पड़ गया, गवर्नर बनाना पड़ गया। किसी का दबाव होगा, किसी को बचाना होगा, कहीं कोई ब्लैकमेल हो रहा होगा, कारण क्या है?
3: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हर उस पीड़ित के साथ खड़े हैं जिसके साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए और वो अपने दायित्व को निभा रहे हैं। अंकिता भंडारी सिर्फ उत्तराखंड की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। पिछले चार साल से माता पिता दर दर इंसाफ की गुहार लगाते हुए भटक रहे हैं। इंसाफ मिलने के बजाय तो जख्म पे जिस तरह नमक छिड़कने का काम इस सरकार ने किया है। एक ऐसा वीआईपी जिसको परिवार आरोपी मानता है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई होने के बजाय उसे महामहिम बना करके उसे संरक्षित किया जा रहा है, इससे शर्मनाक। और क्या
2: कौन कर रहा है संरक्षित?
3: सरकार कर रही है, सरकार बनाएगी, गवर्नर किसी को बनाएगी ना, आम आदमी थोड़े बना सकता है। और परिवार सीधे उसका नाम लेकर के उसको आरोपी ठहरा रहा है। ऐसे में सरकार ये मजाक बना रही है इस देश में न्याय व्यवस्था का। आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है आपके नारे की सच्चाई। आप कहते थे कि देश के लाल किले की प्राचीर से आपने घंटे भर भाषण दिया महिला सशक्तिकरण और बेटियों की सुरक्षा को लेकर, यह है आपके भाषण की सच्चाई। आप यत्र नारेस्त पूजनते रमनते तत्र देवता का सूत्र वाक्य दोहराते हैं देश की संसद में, और देवभूमि उत्तराखंड में एक बिटिया के साथ राक्षसी काम होता है, दोषियों को सजा मिलने के बजाय उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? जो काम इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, वो काम इस देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: All right, now moving on and shifting focus to Punjab. Now, the murder of anti-drugs activist Parvinder Singh Chota has triggered outrage all across Punjab. The BJP, Congress and even the Akali Dal have cornered the Maan government as protesters call for a Punjab band. The chief minister has promised strict action in the case. Meanwhile, Chota's family and supporters held a candlelight vigil demanding justice. Anger over this killing continues to grow, with the protesters calling for a Punjab band and stronger action against the drug menace. Now, the opposition has launched a united attack on the Bhagwant Mann government. Congress alleges police complicity. The BJP questions the collapse of law and order, while the Shiromani Akali Dal backs the band call and demands the chief minister's resignation. Now, Chief Minister Bhagwant Mann, meanwhile, has assured the family that no culprit will be spared, promising the strictest action in the case. Bhagwant Mann says that any conspiracy behind the murder will be investigated and drug trafficking will not be tolerated in the state of Punjab. With that, we're slipping into a short break. See you on the other side with more news and updates. See you.
4: The minds shaping the global conversation. Decode a world between orders. General David Petraeus, Andrew Ng, Nikhil Kamath, Mohini Day, Tilly Norwood, at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Going beyond what's said. Getting to the reality behind the rhetoric.
6: Also, the police action.
5: Taking questions where they matter most.
7: The question is, language ke baat karo.
5: Urgent

0: unilaterally and that the other election commissioners were kept out of the loop. This comes after Rahul Gandhi and the Congress Party workers marched to the Supreme Court registry on Monday to file a petition in the Supreme Court. Well, my colleague Shrishti Oja now joins us on the broadcast to bring us the updates. You know, Shrishti, this is an important update that is taking shape. Help us understand. I believe that the petition that Rahul Gandhi has filed is all set to be heard in the Supreme Court today.
1: Rahul Gandhi's plea, along with a lot of other matters relating to the Jantar Mantar protest that took place on 10th October, were all added into Supreme Court's list for hearing today, very late last night. Now, as we know, Rahul Gandhi had approached the Supreme Court. He went to Supreme Court that day as well for filing of these pleas. A total of 13 opposition leaders, including Rahul Gandhi, have filed this plea before the Supreme Court, questioning the function of Election Commission of India and also the manner in which the decisions have been taken by CEC Gyanesh Kumar, saying that there was a very unilateral and arbitrary exercise of powers. Now they have sought certain relief from the top court in their plea, including an interim order suspending the ongoing SIR exercises across the states pending adjudication. What they also want is audit of all the data, all the files related to the ECR, specifically the SIR decisions that have been taken in different states. We have seen two replies that have come in till now. So other than that, they've also said that they flagged the urgency, saying that there are the Punjab elections are approaching, and therefore the eligible voters in Punjab should be allowed to vote, and other poll-bound states should also ensure that in other poll-bound states also the inclusion of all the voters has to be there as per the law. And the SIR exercise basically needs to be monitored. An independent committee headed by retired SC judge should audit not just the SIR deletions but also the EVM policies. So a very detailed petition has been filed seeking several reliefs. A batch of pleas regarding this is already pending before the Election Commission of India, which is to come up for hearing on 27th of October. So it will be interesting to see if Absolutely. Supreme Court decides to hear him in detail today or not.
0: But Absolutely, Shrishti. You know, as the opposition's arguments reach the apex court, it remains to be seen what truly happens. But we will be tracking all those details very closely. Thank you so much for joining us this morning and bringing us all those crucial updates from the apex court. All right, tracking some more developments for you. While the showdown over Jantar Mantar has escalated, the centre has also filed an affidavit in the case. In its affidavit, the centre has denied willful disobedience of the Supreme Court order, stating that the protest was called despite permission being refused. On the internet suspension, the centre has said that the measure was aimed at preventing disturbance to public order. Well, Youth Congress Chief Uday Bhanu Chib has now moved to Delhi High Court after the centre denotified Jantar Mantar as a protest site. Well, the plea argues that shifting protests to distant locations could dilute the right to peaceful dissent. Meanwhile, the Congress Janata Party is calling for a Tiranga March at Connaught Place on October 16th. Leader of Opposition Rahul Gandhi yesterday extended support to the jailed Congress Janata Party leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka and even vowed to reclaim Jantar Mantar.
2: ये भाजपा जो है किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है कहीं भी झंडा हम फैलाएं ये हमारा देश है लेकिन इसमें आपत्ति क्यों हो रही है ये लोग डरे हुए लोग हैं ये लोग आंदोलन को कुचलना चाहते हैं बदनाम करना चाहते हैं
3: Earlier it was Boats Club. Then it was shifted to this place. Now three other places are being given. Why are they given? Because this is going to be far away. The issue is, why is the government against anyone protesting? A right to protest, Supreme Court has upheld it. So as long as there is no violence as such, protest should be allowed. And these boys have been arrested today. It was not at all necessary to arrest them. Under BNSS, they could have been easily given bail in the police station itself.
0: Well, there are many political developments taking shape. Let's take you through some of them. Now, a major political storm has occurred over allegations of sexual harassment at JNU. Former JNU professor and Congress member parliament Bimola Koijam has been summoned by the Delhi police to join the probe and present his side of the case. The case, remember, follows complaints by female students and an internal inquiry that led to his dismissal from the university. The allegations include lewd remarks in class, inappropriate conduct during Viva examinations, demands for sexual favours. Koijam has dismissed the charges as a witch hunt. Meanwhile, the BJP has taken the matter to the National Commission for Women, with the ABVP staging protests on campus and questioning the Congress leadership's silence. The NCW says that it will take cognizance of the representation and decide on the next course of action in the case.
4: जांच में सही पाने के बाद उसको वहां से बर्खास्त तो किया गया है, लेकिन कांग्रेस के संरक्षण में या कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक उसके बारे में एक शब्द कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, कांग्रेस पार्टी का उसको संरक्षण प्राप्त है। तो जो हमारी बच्चियां जिन्होंने इतनी हिम्मत के साथ इस बात को सामने लाई हैं, अब चूंकि उसी कॉलेज में वो अध्ययनरत हैं, तो निश्चित रूप से उन बच्चियों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा, भविष्य में उनको किसी भी तरह के नुकसान न हो, इसका भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जो देश के पवित्र सदन लोकसभा का सांसद है, नियमानुसार कांग्रेस को तो अपने पार्टी से उसको तत्काल में बर्खास्त करना चाहिए था, हमारी उन युवतियों की सुरक्षा और उनके सम्मान को की चिंता करते हुए, लेकिन उसने अभी तक अपने पार्टी से भी बर्खास्त नहीं किया है।
5: भाजपा महिला मोर्चा और उसी के साथ साथ राज्यसभा की और लोकसभा की सांसदों द्वारा निवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जेएनयू के जो प्रोफेसर है, जो सांसद भी है, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट के अनेक आरोप है, और उनके बारे में आज उनके खिलाफ उन्होंने हमें यहाँ पे निवेदन दिया है। कमीशन का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए कमीशन इन विषयों का संज्ञान लेगा और उसी के साथ साथ उचित निर्णय भी करेगा।
6: 11 से अधिक छात्राओं ने आईसी में प्रोफेसर बिमोल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था, और जैसे विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90 दिनों के अंदर उस केस पे रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए था, लेकिन सितंबर का महीना आ गया था और कोई उस पे कार्रवाई ही तक नहीं हुई थी। तो एबीवीपी को मीडिया के माध्यम से ही इस केस के बारे में पता लगता है, और तब तक तो ये भी नहीं पता था कि इस केस में प्रोफेसर बिमोल शामिल है। तब एबीवीपी ने इसके खिलाफ में प्रदर्शन शुरू किया था, बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर बिमोल है, तो हम लोगों ने प्रदर्शन में पुतला दहन करना, मार्च निकालना, क्लास टू क्लास कैंपेन, मैस कैंपेन, जितना हो सकता है उस तरीके का विरोध हमने प्रदर्शन किया, और तब जाके इस पे प्रोसीडिंग हुई है आईसी की। और अक्टूबर के मंथ में, अभी कुछ दिन पहले ही, आईसी की जो प्रोसीडिंग की रिपोर्ट आती है और उसमें प्रोफेसर बिमोल को गिल्टी माना जाता है, गिल्टी प्रूव होते हैं वो।
7: He himself admitted that he has 15 cases on him about sexual harassment. He has harassed 11 girls inside the campus of JNU, inside the classrooms, inside the four walls of the classrooms, and he is roaming around in no dissent. No regret, nothing at all.
0: All right, we have some breaking news coming in early this morning. Let's take you through it. Ankita Bhandari's parents have been released after detention. That's the latest update that we have for you. The Delhi police, remember, on Thursday detained Ankita Bhandari's parents and several other opposition leaders during a sit-in protest at India Gate, with Congress leaders accusing the police of manhandling the demonstrators and even demanding justice in the Ankita Bhandari case. Well, the detentions took place around 4 a.m. in the morning and they were released around 5 a.m. This is what the latest information goes on to suggest. An important update where we understand that after detention, Ankita Bhandari's parents have been released in the latest. My colleague Soumya is with us on the broadcast to break down the details. Soumya, that's a crucial update that is coming to the fore. I believe that Ankita Bhandari's parents have been demanding justice for their daughter, and they were staging a sit-in demonstration yesterday at India Gate when they were detained. If you could just walk our viewers through the sequence of events and tell us all what happened in this particular incident.
8: Yes, well, Reet, see, this was late in the evening yesterday when Ankita Bhandari's parents, along with women rights activist Yogita Bhayana, they sat on a protest here in the National Capital at India Gate. They were later joined by LOP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, several other senior leaders of Congress and several Congress workers as well. And it was a sit-in protest. Much later in the night, between 3:30 to 4 a.m., Ankita Bhandari's parents, along with several other Congress leaders and workers, were detained and were taken to Tilak Marg police station here in the National Capital. As per the latest development, the information that we have is exactly after half an hour of the detention, Ankita Bhandari's parents, along with several leaders and workers of Congress who were detained, were released from Tilak Marg police station here in the National Capital. Remember, this protest has brought new attention of the National Capital in this four-year-old case wherein 19-year-old Ankita Bhandari was murdered. There has been a demand of Ankita Bhandari's parents. Ankita Bhandari's father has been demanding that the appointment of Dushyant Kumar Gautam as governor of Sikkim should be put on hold until unless the ongoing CBI investigation to the case is complete. He has been requesting the President of India, Draupadi Murmu, to put on hold the appointment of Dushyant Kumar Gautam. It is being alleged by the parents of Ankita Bhandari that there was an alleged role of a VIP that led to the murder of Ankita Bhandari. They are alleging that the VIP concerned in this case is Dushyant Kumar Gautam. So these are the details that we are picking up.
0: All right, Soumya, thank you so much for joining us early this morning and bringing us those important updates. Moving on to some more breaking news for you. Well, the Delhi police, in the latest we understand, has filed an FIR against NACY women workers. That's right, the NACY women workers have now, in fact, they've seen an FIR against them. This is over allegations of alleged assault on women constable. Well, the Delhi police has, in fact, in the latest, registered an FIR against NACY women workers. This is with regard to an alleged assault on the woman constable. An important update that we're tracking coming in from the National Capital. As we understand that amidst heightened tensions, now the Delhi police has filed an FIR against NACY women workers. Listen into the reactions coming in on this. All right, my colleague Mukesh joins us on the broadcast. Before we listen into the reactions, let's also get in a word from him. You know, Mukesh, this is quite an important update that's coming to the fore. The Delhi police at the latest has filed an FIR against NACY women workers. Help us understand the context in which this case has been filed.
9: देखिए बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल चंचल यादव हैं वो राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन से कुछ जो एनएसवाई के वर्कर्स थे उनको डिटेन करके बस में ले जा रही थी. उसी दौरान एक जो महिला वर्कर थी उस पर एलिगेशन ये है कि उसने जो कांस्टेबल थी उसके बाल खींचे और उसके साथ में मारपीट की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. उसमें हालांकि कांस्टेबल ही मारपीट करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कांस्टेबल का एलिगेशन ये है कि वो वर्दी में थी और उसको पहले एनएसआई वर्कर ने उसके बाल खींचे और उसको थप्पड़ मारा. उसके बाद उसने कंट्रोल करने के लिए उसको जो है उसके साथ मारपीट की. तो इस तरह से जो महिला कांस्टेबल है चंचल यादव, उसने उसकी मेडिकल जांच हुई थी, एमएससी हुई थी और एमएससी के बाद दिल्ली पुलिस ने एनएसआई वर्कर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. और पुलिस के
0: Right, Mukesh, thank you so much for joining us early this morning on the broadcast and sharing those important updates with us. In fact, you know, we also have an important update there. Remember, the leader of opposition, Rahul Gandhi, held a press conference with these NACY workers and went on to call the female NACY workers as sher. Let's also listen into what the leader of opposition had to say.
10: अच्छा ये मैं special introduction करना चाहता हूँ. ये sher नहीं है. ये sher नहीं है. जान रहे उसको? ये शेर नहीं है, इसको मारा, कोई डर नहीं लगा? डर लगा?
11: नहीं लगा सर. नहीं लगा, नहीं लगा.
10: नफरत थी दिल में?
11: नफरत नहीं थी, प्रेम था. जितना मारा हमने ये बोला खुला, आज मन जितना है उतना भर के मारो.
0: All right, now moving on to more updates and this time focusing on the state of Punjab. Now, the murder of anti-drugs activist Parvinder Singh Chota has triggered outrage all across Punjab. The BJP, the Congress, the Shiromani Akali Dal, they've all cornered the Maan government as protesters call for a Punjab Band. The Chief Minister Bhagwant Mann has promised strict action. Meanwhile, Chota's family and supporters held a candlelight vigil demanding justice. Well, there is anger over his killing which continues to grow, with protesters calling for a Punjab Band and stronger action against the drug menace. The opposition, remember, has launched a united attack on the Chief Minister Bhagwant Mann. Congress alleges police complicity. The BJP questions the collapse of law and order, while the Shiromani Akali Dal backs the Band call and demands the Chief Minister's resignation. Chief Minister Bhagwant Mann, meanwhile, has assured the family that no culprit will be spared in this case. Promising the strictest action, the Mann government says that the conspiracy behind the murder will be investigated and drug trafficking will not be tolerated in the state of Punjab.
12: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
13: ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਹੈਂਡ ਸੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮਾਨਨੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ इसको लेके अपना बयान भी दिया है, स्टेटमेंट जारी करी है और दोषियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल जो भी इलीगल काम पंजाब में करेगा उसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। और दूसरा, मैं परमिंदर जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि बहुत उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है और हमारे सभी के लिए दुखदायक घटना है। सो हम संवेदना प्रकट करते हैं। और दूसरा, जो भी पंजाब में नशे का काम करेगा या किसी के खिलाफ कोई पर्सनल काम करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे।
14: ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਮਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ।
15: ਦੇਖੀਏ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਹਮਾਰਾ MLA, ਕੋਈ ਹਮਾਰਾ ਨੇਤਾ ਉਸਮੇਂ ਬਾਧਾ ਨਾ ਬਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਲਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਆ ਥਾ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕੀਆ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਕੋ ਅਰੈਸਟ ਕੀਆ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰ
16: ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਚੋਟਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ, ਉਸਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਸੁਬਹਾ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਮਨੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲੀ। ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹਮਨੇ 4 ਦਸਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ ਖਤਮ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਨ ਸਭਾ ਕੀ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸੇ ਜੇ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
17: ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਰਹੇ, शरेआम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इनको पैटर्नाइज कौन कर रहे हैं, इन लोगों को सभी शहरों में आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर, इसलिए तो इन लोगों के इतने हौसले पा चुके हैं। लेकिन अब जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है, इनके एमएलए को भी इनके मिनिस्टर को भी लोग भगाएंगे।
18: बहुत ही दुखदाई जिहड़ी घटना वापरी आ मानसा जिला दे विच, एक मैडिकल स्टोर वाले वालों जो लगातार नशा बेच रहा सी जिहदे उत्ते 25 तो 27 मामले दर्ज सी और लाइसेंस भी कैंसल करन तो बाद लाइसेंस भी बहाल कर दिता जांदा है। उस मैडिकल स्टोर वाले नूं जदों रोकण वास्ते गया परमिंदर सिंह झोटा मानसे का रहण वाला जो अक्सर ही नशे दे उत्ते जिहड़ा वा आवाज़ चुकदा सी, सो उस मैडिकल स्टोर वाला जो अश्वनी आ उहदे वल्लों गोलियां मार के परमिंदर सिंह झोटे का शरेआम कतल कर दिता जी। वेखो लगातार प्रशासन लगा वा सरकार दे कहन दे उत्ते लगातार ये कोशिश की जा रही भी उहदा संस्कार किया जाए धक्के दे नाल, जिवें कि पिछले दिन ही कईयां दा संस्कार जिहड़ा उह कीता गया, पर उत्थे जथेबंदियां ने, अंग जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, समुचियां जथेबंदियां जिहड़ियां ने उह डटियां ने।
16: परमिंदर झोटा जो एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट था उसको गोली मार के हत्या कर दी, कोई ऐसा दिन नहीं है पंजाब में सुबह उठते हैं तो ये पता चलता है कि इतने आदमी गोलियों से मार दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है, नशे तो मुद्दे तो बहुत है पंजाब के, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नशा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी हमने यात्रा भी निकाली।
0: All right, now moving on to Kerala, I'm tracking some updates for you. We have some devastating information coming into the fore. Well, three people have been killed after a Mini Cooper crashed in Kerala. According to the remand report, Kochi police alleged that the driver Sohail was intoxicated at the time of the crash. Police say that Sohail and his friends had consumed alcohol at multiple locations and that his friends encouraged him to drive faster, despite knowing the fact that he was intoxicated. Investigators are also probing whether the Mini Cooper was racing another vehicle. Possible narcotics use is also under investigation, with drug consumption yet to be established in the case. Meanwhile, Kerala Home Minister Ramesh Chennithala has assured that no accused will be spared in this case. Well, we have some breaking news coming in from Uttar Pradesh. Let's take you through it. We have some information coming in from Uttar Pradesh's Lucknow. Now, this is information from Lucknow's cafe, where we understand that there has been a death of a Lucknow cafe owner. That's right, the living partner's SUV was found near the Nepal border. A black car alleged to be owned by the living partner of a 27-year-old cafe owner who fell to his death days ago. This car was found abandoned near the Nepal border. Remember that there were pieces of information that were going on to suggest that it is possible that the accused in the case has fled to Nepal. And in the latest that we're tracking, we understand that the car, the black car owned by the living partner of the 27-year-old cafe owner, was found abandoned near the Nepal border as per the police. The car is a Mahindra Scorpio N. It is registered in the name of Shraddha Dubey, a fashion model, and it was found parked near the Nepal border, approximately 1 kilometer away from it. We also have some reactions lined up for you. Let's take you through them.
19: मेरा आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि प्लीज़ मेरे नाम को ऐसे मत उछालिए, आप हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। आप लोगों ने कई नेताओं, कई अधिकारियों के साथ मेरा बेवजह का नाम जोड़ा है, क्योंकि हाँ, अगर वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई ऐड है तो आप मेरे बारे में ऐसी अफवाह मत फैलाइए। मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ठीक है। मीडिया वाले से मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बारे में अफवाह मत फैलाइए। मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं पुलिस में आके बयान देना चाहती हूँ, मैं उन्हें सब कुछ सच सच, जो कुछ भी है मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने कुछ नहीं किया है। और जो कुछ भी सच है शिवा शर्मा कांड से रिलेटेड, कि उसकी कोई हत्या नहीं हुई थी, वो एक सुसाइड था।
0: All right, to shed more light on this, my colleague Ajay Dubey now joins us on the broadcast. Ajay, if you could just walk us through the details, because, you know, a lot of angles are now appearing to be emerging in this specific case. You know, help us break down the details. We understand that the car of the accused was found near the Nepal border.
20: After the incident, initially when police started the investigation, at that time it was very much clear that Shraddha left Lucknow and with one of her friend and her sister, she reached towards the border of Nepal, and yesterday they have found her car also. And meanwhile, she also gave her explanation that it was a pure suicide case. She will come in front of the police later on when her health will be all right. And that is what she is saying. But in this scenario right now, the social media is filled up with the photos of Shraddha Dubey with the various politicians and claims that she was connected with various other influencing people also. So this is going on in this case. Police is investigating and the prize is announced.

0: वो केवल दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि हमने 2 फरवरी 2026 से सीबीआई की जांच शुरू कर दी, लेकिन नहीं हुई।
1: जो न्याय प्रणाली है उस पर कितना आपको विश्वास है, भरोसा है कि आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा?
2: 4 साल से रो रहे हैं हम कि हमें न्याय दो, मेरे बेटे निर्दोष थी और उसके साथ इतना कुछ हुआ। सरकार ने हमें हमेशा भरोसा दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा, न्याय होगा, लेकिन हर बार हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया कि हर बार कभी उसके सपूत मिटाए गए, कभी मतलब जो ये वकील है अपने मतलब अपने सरकार द्वारा जो वकील था, वकील ने भी मतलब हमारे केस को ख़राब करने की कोशिश की। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि जो बलात्कारी है उसको राज्यपाल घोषित कर रहे हैं, तो ये तो कितनी बड़ी दुख की बात है कि बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए।
3: हैरानी की बात यह है, आप कठुआ से शुरू कीजिए, हाथरस पे आइए, बिल्किस बानो पर आइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आइए और अब दुष्यंत कुमार पर आइए, दुष्यंत कुमार गौतम पर आइए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी आरोपी के साथ खड़ी हुई मिलेगी। जो बलात्कार का विक्टिम है, मॉलेस्टेशन का विक्टिम है, जिसका मर्डर हो गया, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नहीं नजर आ
1: सकती। इज बीइंग शील्डेड बाय हू?
3: वेल, हू एल्स कैन, हू एल्स डू यू थिंक विल शील्ड हिम? द टॉप मोस्ट पीपल, मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह आर द ओनली वन शील्डिंग। इस सरकार में और किसी की चलती है क्या? यही तो दो हैं जिनकी चलती है। अब हमें यह समझना है कि किसका दबाव है, कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है कि आपको आनंद फानन में इन्हें लाट साहब बनाना पड़ गया, गवर्नर बनाना पड़ गया। किसी का दबाव होगा, किसी को बचाना होगा, कहीं कोई ब्लैकमेल हो रहा होगा, कारण क्या है?
4: सौम्या जायसवाल ट्रैकिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स फॉर अस, जॉइंस अस लाइव एट द मोमेंट। Soumya, we're given to understand that Ankita Bhandari's parents have been released after detention at 5 a.m. this morning. But Ankita's father has now issued quite an ultimatum to the government.
5: Yes, well, this is the latest development since yesterday. Yesterday late evening, Ankita Bhandari's parents sat on a protest here in the national capital at India Gate. They were joined by women's rights activist Yogita Bhayana and later on also by LOP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and several other senior leadership of Congress and Congress workers. They were detained late last night around 3:34 a.m. and released half an hour later. As of now, the details with regards to their protest is that they have been incessantly demanding appointment of Dushyant Kumar Gautam as the governor of Sikkim should be put on hold, because since last year of December, this VIP angle has been doing the rounds when certain audio clips and video clips came out in the forefront, which suggested that the person named Gattu in those video clips and audio clips were about Dushyant Kumar Gautam. So the VIP angle has been doing the rounds since December of 2025, and now there is a CBI probe underway. So the parents of Ankita Bhandari through this protest have been demanding that his appointment as the governor of Sikkim should be put on hold until unless the CBI probe in this particular case has been done. So these are the details that we're picking up.
4: Soumya, we'll of course continue to track how this case progresses. Thanks so much for joining us. All right, let's turn our attention to the latest coming in from Punjab currently. This video you're about to see is from Patiala. It appears to show a minor driving a Toyota Innova and allegedly hitting several vehicles. Now, the person recording the footage says he began filming because he feared the vehicle might hit him. This footage is circulating on social media now. But you must note at this stage the circumstances of the incident, the extent of any damage caused, and whether the police have identified the driver remain to be established. But a dramatic video that is now viral from Punjab's Patiala, it appears to show a minor driving an Innova and allegedly hitting several vehicles. Just take a look at this clip playing out on your screens. A minor is driving this vehicle, mind you. The person recording the footage says he began filming because he feared that the vehicle might hit him. This clip is now viral, but the circumstances of the incident, whether the police have identified the driver, and the extent of the damage caused, these are matters that are yet to be established by investigators.

0: अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट्स सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनी वन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हमारा सामने जाके जे भाव हत्या कर ले तब फांसी दवा तो उची.
0: Also, the police action.
1: Taking questions where they matter most.
3: The question is, language ke baat kare.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: देश का टायर, जेके टायर.
6: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है. ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी.
7: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डूड.
8: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड. खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी.
9: एक परिवार, अटूट भरोसा.

0: तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे।
1: कल्ले मानसा की गल नहीं है, यह साडे सूबे के हालात इन्ने खराब हो चुके आ, पुलिस बिल्कुल हथ खड़े कर चुकी आ, पुलिस समगलां दे नाल रली हुई आ, सरकार दी शह ते नशा विकदा, जिहड़े इह कहिंदे सी वी असीं नशे दा खात्मा कर देणा, उन्हें मैडिकल नशा शुरू कर लिया, ते इह साडे सूबे लई साडे नौजवानां लई बहुत वड्डी इक चैलेंज आ। और मैनू लगदा सानू सारिआं नू जोश ते होश दे सुमेल तो असीं 3 महीने आ जिन्ना चिरा सरकार हैगी आ, वैसे सरकार नहीं है चलदी इह धाड़वीआं कोलों आ, लेकिन असीं 3 महीने सोच समझ के सियाणप नाल अपनी नौजवान पीढ़ी नूं भी किते ना किते बचा लईए ते पंजाब नूं भी बचा लईए। लेकिन इस देश दे विच, इस सूबे दे विच बीजेपी ते आम आदमी पार्टी की सरकार इक्को जिहा बिहेव कर रही।
2: देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये मान साहब की शुरू से पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस नीति है, अगर कोई व्यक्ति नशे के कारोबार में है, अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले रहा है, तो कोई भी हमारा मंत्री, कोई हमारा MLA, कोई हमारा नेता उसमें बाधा ना बना है ना बनेगा। अगर किसी व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया, जैसे इस व्यक्ति ने लिया था, मानसा वाले ने, पुलिस वहां पे अपना काम कर रही है, पुलिस ने अपना काम किया, 24 घंटे से पहले पहले उसको अरेस्ट किया, वहां पर कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर प्रशासन अपना काम कर रहा
3: है। परमिंदर चोटा जो एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट था, उसको गोली मार के हत्या कर दी। कोई ऐसा दिन नहीं है पंजाब में, सुबह उठते हैं तो ये पता चलता है कि इतने आदमी गोलियों से मार दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है। नशे तो मुद्दे तो बहुत है पंजाब के, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नशा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी, हमने यात्रा भी निकाली। यात्रा की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने की, फिर सारे बड़े बड़े मंत्री साहब आए, हमने 4 दिशाओं से शुरू करके उसको ख़त्म किया। जलंधर में वहाँ पे हमारे गृह मंत्री साहब आए, एक बहुत बड़ी जनसभा की वहाँ पे मंत्री साहब ने, गृह मंत्री साहब अमित शाह जी ने लोगों से ये भी बताया कि अगर इसको ख़त्म करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।
4: अगर सरकार अपने फर्ज पूरे करती, लेकिन ये तो महीने ले रहे हैं, शहरे आम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इनको पैटर्नाइज कौन कर रहे हैं इन लोगों को, सभी शहरों में आम आदमी पार्टी के MLA, आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर, इसलिए तो इन लोगों के इतने हौसले बढ़ चुके हैं। लेकिन अब जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है, इनके MLA को भी, इनके मिनिस्टर को भी लोग भगाएंगे।
5: बहुत ही दुखदाई जिहड़ी घटना वापरी आ मानसा जिला दे विच, एक मैडिकल स्टोर वाले वालों जो लगातार नशा वेच रहा सी, जिहदे उत्ते 25 तो 27 मामले दर्ज सी, और लाइसेंस भी कैंसल करन तो बाद लाइसेंस भी बहाल कर दिता जांदा है। उस मैडिकल स्टोर वाले नूं जदों रोकण वास्ते गया परमिंदर सिंह झोटा, मानसे दा रहण वाला, जो अक्सर ही नशे दे उत्ते जिहड़ा वा आवाज़ चुकदा सी, सो उस मैडिकल स्टोर वाला जो अश्वनी आ उहदे वल्लों गोलियां मार के परमिंदर सिंह झोटे का शरेआम कतल कर दिता। जी वेखो, लगातार प्रशासन लगा वा सरकार के कहन के उत्ते, लगातार ये कोशिश की जा रही भी उहदा संस्कार किया जाए धक्के दे नाल, जिवें कि पिछले दिन ही कईयां दा संस्कार जिहड़ा किया गया, पर उत्थे जथेबंदियां ने, अंग जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, समुचियां जथेबंदियां जिहड़ियां ने उह डटियां ने।
6: ऑलराइट, टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। अप इन अ मोमेंट, द शिकागो पुलिस सेज अ पोटेंशियल मास शूटिंग at a temple has been averted and a teenager is now in custody. We bring you all the details in a moment.
7: Code of conduct lagaya hua hai.
8: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
9: Anyone message of unit
7: also the police action,
8: taking questions where they matter most.
7: The question is language ki baat kare,
8: urgent, exact, empathetic.
7: There is no fire escape, there is no alternative safety route,
8: because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here, weekdays 8 PM only on NDTV. When it really matters.
10: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
11: देश का टायर JK टायर।

0: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार, अटूट भरोसा।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: On that note, let's turn our attention to the Delhi police filing an FIR against women workers of the National Students Union of India in connection with a bus assault case. Delhi police has alleged that NSUI workers have brutally assaulted women constable. The FIR has been registered on the basis of the woman constable's complaint, I beg your pardon. The constable has alleged that she was assaulted by NSUI workers. Meanwhile, a zero FIR has been registered by the Keralam police over allegations of assault on a woman NSUI leader in Delhi. In fact, you know, about that zero FIR that's been filed in Keralam, I'm just going to point out a few details. A 26-year-old DU student from Kozhikode has detailed that she was dragged from a bus, she was punched, she was kicked in her lower abdomen, her private parts were kicked as well. Listen in to her entire tragic ordeal.
1: She's lost her hearing in 1 year. Okay? She's deaf in 1 year. Because she's been beaten in that year, she cannot hear anymore. Last time I showed you a boy who's blinded in one eye. Now she's deaf in 1 year. Just so that you know.
0: On that note, let's turn our attention now to the major political storm over allegations of sexual harassment at JNU. Former JNU professor Bimal Okoyejam has been summoned by Delhi police to join the probe and present his side. This case follows complaints by female students and an internal inquiry that led to his dismissal from the university. These allegations include demands for sexual favors, lewd remarks in the classroom, inappropriate conduct during viva examination, and Mr. Okoyejam has dismissed the charges as a witch hunt. Meanwhile, the BJP has taken up the matter to the National Commission for Women, with ABVP staging protests on campus and also questioning the Congress leadership's silence regarding the matter. The NCW says it will take cognizance of the representation and decide on the next course of action.
2: जांच में सही पाने के बाद उसको वहां से बर्खास्त तो किया गया है, लेकिन कांग्रेस के संरक्षण में या कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक उसके बारे में एक शब्द कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, कांग्रेस पार्टी का उसको संरक्षण प्राप्त है। तो जो हमारी बच्चियां जिन्होंने इतनी हिम्मत के साथ इस बात को सामने लाई हैं, अब चूंकि उसी कॉलेज में वो अध्ययनरत हैं, तो निश्चित रूप से उन बच्चियों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा, भविष्य में उनको किसी भी तरह के नुकसान न हो, इसका भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जो देश के पवित्र सदन लोकसभा का सांसद है, नियमानुसार कांग्रेस को तो अपने पार्टी से उसको तत्काल में बर्खास्त करना चाहिए था, हमारी उन युवतियों की सुरक्षा और उनके सम्मान को की चिंता करते हुए, लेकिन उसने अभी तक अपने पार्टी से भी बर्खास्त नहीं किया है।
3: भाजपा महिला मोर्चा और उसी के साथ साथ राज्यसभा की और लोकसभा की सांसदों द्वारा निवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जेएनयू के जो प्रोफेसर है, जो सांसद भी है, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट के अनेक आरोप हैं। और उनके बारे में आज उनके खिलाफ उन्होंने हमें यहाँ पे निवेदन दिया है। कमीशन का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए कमीशन इन विषयों का संज्ञान लेगा और उसी के साथ साथ उचित निर्णय भी करेगा।
4: 18 से अधिक छात्राओं ने आईसी में प्रोफेसर बिमोल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था और जैसे विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90 दिनों के अंदर उस केस पे रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए था, लेकिन सितंबर का महीना आ गया था और कोई उस पर कार्रवाई तक नहीं हुई थी। तो एबीवीपी को मीडिया के माध्यम से ही इस केस के बारे में पता लगता है और तब तक तो ये भी नहीं पता था कि इस केस में प्रोफेसर बिमोल शामिल है। तब एबीवीपी ने इसके खिलाफ में प्रदर्शन शुरू किया था, बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर बिमोल है, तो हम लोगों ने प्रदर्शन में पुतला दहन करना, मार्च निकालना, क्लास टू क्लास कैंपेन, मैस कैंपेन, जितना हो सकता है उस तरीके का विरोध हमने प्रदर्शन किया और तब जाके इस पे प्रोसीडिंग हुई है आईसी की। और अक्टूबर के मंथ में अभी कुछ दिन पहले ही आईसी की जो प्रोसीडिंग की रिपोर्ट आती है और उसमें प्रोफेसर बिमोल को गिल्टी माना जाता है, गिल्टी प्रूव होते हैं वो।
5: हिमसे himself admitted that he has 15 cases on him about sexual harassment. He has harassed 11 girls inside the campus of JNU, inside the classrooms, inside the four walls of the classrooms, and he is roaming around in no regret, nothing at all.
0: Meanwhile, around 4 a.m. today, Delhi police detained Ankita Bhandari's parents and several opposition leaders during a sit and stir at India Gate. They were released an hour later at 5 a.m. with the Congress alleging police manhandling and demanding justice. 4 years after 19-year-old Ankita Bhandari was murdered in Uttarakhand, her parents have taken their fight to Delhi. They are appealing to the president to halt Dushyant Kumar Gautam's appointment as the governor of Sikkim until the CBI completes its probe into the alleged VIP angle. Gautam was named the governor a day before the protest, and Rahul Gandhi has joined the protest, with Congress questioning the timing of the appointment. The Uttarakhand government, meanwhile, says arrests were made within 24 hours and all three convicts were sentenced to life imprisonment back in 2025. But a fresh CBI case was filed earlier this year to probe the alleged VIP angle. Let's now listen in to the reactions from the protesters, including Ankita's parents, as captured by my colleague, Akhil Jameel.
6: कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी जी आपसे आए मिले, क्या कुछ बात हुई?
7: देखो, यहाँ पे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नेताजी राहुल जी मिले और प्रियंका गांधी जी मिले हमें। उन्होंने कहा जो भी मदद होगी, जो भी सहयोग होगा, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और मेन हमारा यहाँ पे दिल्ली आने का मेन मकसद ये था कि अगर हम अपने उत्तराखंड से आवाज़ उठाते तो वो सोशल मीडिया में कम ही भारत के कोने कोने जाती, इसलिए हमें दिल्ली आना पड़ा। जिस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे होना था, वो व्यक्ति आज सिक्किम का राज्यपाल सरकार ने नियुक्त कर दिया है। और हमने कहा कि हम अब सीधा दिल्ली चलेंगे और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बिना निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति मेरी बेटी अंकिता भंडारी का वीआईपी है, उसका एसआईटी द्वारा जांच नहीं की गई, वो व्यक्ति आज सिक्किम का राज्यपाल कैसे हो सकता है? 8 महीने से सीबीआई की जांच नहीं हुई, वो केवल दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि हमने 2 फरवरी 2026 से सीबीआई की जांच शुरू कर दी, लेकिन नहीं हुई।
6: जो न्याय प्रणाली है उस पर कितना आपको विश्वास है, भरोसा है कि आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा?
8: 4 साल से रो रहे हैं हम कि हमें न्याय दो, मेरे बेटे निर्दोष थी और उसके साथ इतना कुछ हुआ। सरकार ने हमें हमेशा भरोसा दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन हर बार हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया कि हर बार कभी उसके सपूत मिटाए गए, कभी जो ये वकील है अपने सरकार द्वारा जो वकील था, वकील ने भी हमारे केस को ख़राब करने की कोशिश की। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि जो बलात्कारी है उसको राज्यपाल घोषित कर रहे हैं, तो ये तो कितनी बड़ी दुख की बात है, कि बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए।
9: हैरानी की बात यह है, आप कठुआ से शुरू कीजिए, हाथरस पे आइए, बिल्किस बानो पर आइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आइए और अब दुष्यंत कुमार गौतम पर आइए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी आरोपी के साथ खड़ी हुई मिलेगी। जो बलात्कार का विक्टिम है, मॉलेस्टेशन का विक्टिम है, जिसका मर्डर हो गया, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नहीं नजर आती।
6: He is being shielded by whom?
9: Well, who else do you think will shield him? The topmost people, Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah are the only ones shielding. इस सरकार में और किसी की चलती है क्या? यही तो दो हैं जिनकी चलती। अब हमें यह समझना है कि किसका दबाव है, कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है कि आपको आनन फानन में इन्हें लाट साहब बनाना पड़ गया, गवर्नर बनाना पड़ गया। किसी का दबाव होगा, किसी को बचाना होगा, कहीं कोई ब्लैकमेल हो रहा होगा, कारण क्या है?
0: Alright, on that note, we're slipping into a very quick commercial break, but while we gather the latest updates for you, you must note winter is knocking on the doors of the Himalayas, with the season's first snowfall in the higher reaches of Manali and Kashmir. In fact, in Himachal Pradesh, the Rohtang Pass area has been receiving fresh snow over the past few days, turning the higher mountains white. Meanwhile, in Kashmir, in Gulmarg, Sonamarg and several high altitude passes, They have received the season's first snow, bringing down temperatures across the region. This fresh snowfall, as you can quite clearly tell, has brought a wintry charm to the mountains.

0: कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: आमा स्वामी जाके जे बाबू हत्या कर ले ताबे फांसी दवा तो छी.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
3: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की हम बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: Har baar wahi gold jewelry kaise pehen sakti hu? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है. तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज.
7: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने.

0: कंडक्ट लगाया हुआ है.
1: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक.
0: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट
2: हम स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले तब फांसी दवा तो छी.
0: ऑल्सो द पुलिस एक्शन,
1: टेकिंग क्वेश्चंस वेयर दे मैटर मोस्ट.
3: द क्वेश्चन इज लैंग्वेज की हम बात करें.
1: अर्जेंट, एग्जैक्ट, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात.
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
6: अरे मेरे राजा.

भले वो बैलेट से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो, भले वो त्रिपुरा में बायपोल हो या असम में बायपोल हो, हर जगह, भले वो यूथ का डूसू का चुनाव हो या चंडीगढ़ में यूथ का चुनाव हो, हर जगह इस देश का युवा राहुल गांधी की एनआरकी को रेजिस्ट कर रहा है और उसका विरोध कर रहा है। उसके बावजूद अगर राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल बांग्लादेश जैसा आंदोलन भारत के अंदर करना चाहती है, तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि हम सब लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, क्या हर लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या इसका विरोध नहीं करेगा? क्या हर व्यक्ति जो भारत के संविधान के अंदर विश्वास रखता है, क्या वो इसके खिलाफ नहीं बोलेगा? और इसीलिए 10,000 की कांग्रेस के और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की भीड़ कनॉट प्लेस के आसपास लाने से देश का मंतव्य तय नहीं होता है। देश का मंतव्य दूर दराज गांव से तय होता है, देश के कोने कोने से तय होता है। और वही देश का कोना कोना कह रहा है नो टू एनआरकी, यस टू डेमोक्रेसी, नो टू कांग्रेस, यस टू कॉन्स्टिट्यूशन, नो टू राहुल गांधी, यस टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो आज मैं हर व्यक्ति, हर युवा से कहना चाहता हूं कि हम सब भारत में, भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये नेहा बोरा जिनके शब्द हैं, सोच विचार राहुल गांधी का है, ये भारत के अंदर एनआरकी को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं और इसके बहाने अपने परिवार को सत्ता में लाना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, जितना मेहनत अराजकता फैलाने में आप और आपका इकोसिस्टम लगा रहा है, अगर उतनी ताकत आप इस देश में जनता की सेवा करने में लगा रहे होते, तो क्या पता 3-4 जगह कांग्रेस का वोट बढ़ जाता। पर राहुल गांधी ने पूर्व में कहा था, हिज फाइट इज नॉट अगेंस्ट द बीजेपी, हिज फाइट इज नॉट अगेंस्ट द आरएसएस आइडियोलॉजी, हिज फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। और इंडियन स्टेट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी। तो आज मैं हर पत्रकार बंधु से भी कहना चाहता हूं, जिसको कांग्रेस के लोग जो लोकतांत्रिक रूप से जमीन पर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता घेर घेर कर उन पे दबाव और उनको प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, कि आज हर व्यक्ति भारत में डेमोक्रेसी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा है। नेहा बोरा के शब्द राहुल गांधी के विचार को स्पष्ट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो विद इन 1 आवर, अगर राहुल गांधी जो हर 1 घंटे में ट्वीट करते हैं, जो रील मेकिंग एक्सपर्ट बन चुके हैं, जो रील मेकिंग के कंपटीशन कर रहे हैं, अगर उनकी मानसिकता अराजक नहीं है, तो मैं कहता हूं 1 घंटे के अंदर नेहा बोरा के खिलाफ स्टेटमेंट देकर दिखाइए, क्योंकि वो और आप एक ही हैं। तो आखिरी में मेरे 3 पॉइंटेड सवाल है। पॉइंटेड सवाल नंबर 1, कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा आंदोलन करने का प्रयास क्या यह स्पष्ट नहीं करता है कि राहुल गांधी की अराजकता का प्रूफ आ चुका है? सवाल नंबर 2, राहुल गांधी और नेहा बोरा में कोई डिफरेंस नहीं है, क्या इससे स्पष्ट नहीं होता है कि राहुल गांधी का ऑपोजिशन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश है? पॉइंट नंबर 3, क्या इससे यह प्रूफ नहीं होता है कि राहुल गांधी रेजिस्टेंस के बहाने अराजकता फैला रहे हैं? पॉइंट नंबर 4, कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट या आइसोलेटेड बयान नहीं है, शी इज द पोस्टर गर्ल ऑफ द कांग्रेस पार्टी इकोसिस्टम। और उसके जस्ट पहले प्रशांत भूषण ने भी स्ट्रीट रेवोल्यूशन और खून खराबे की बात करी थी। तो क्या ये सीरीज ऑफ पैटर्न ये पॉइंट नहीं करते कि इनका मकसद इस देश के लोकतंत्र इंडियन स्टेट के खिलाफ एक रिवोल्ट लाने का है? इन सब पे एक ही प्रूफ है, दैट टुडे इट इज प्रूवन दैट राहुल इज एन एनार्किस्ट। राहुल गांधी आत्मचिंतन करने के बजाय अपने पूरे इकोसिस्टम से अराजकता को बढ़ावा, अराजकता का समर्थन और अराजकता को अपना रहे हैं। और इसीलिए इस देश की जनता जब ये अराजकता को अपना रहे हैं, बार बार बैलेट के जरिए इनको बता रही है नो टू एनआरकी। तो आज का हमारा मकसद है नो टू एनआरकी, यस टू डेमोक्रेसी,
नो टू राहुल गांधी, यस टू डेमोक्रेसी, नो टू परिवारवाद, यस टू डेमोक्रेसी। और यही दो विचारों की बात आज देश के अंदर हो रही है। ये

0: country. Therefore, we seek an answer from Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Sonia ji as well, because they stand up solidly and say that we stand for the dignity of the woman of the country. Whereas here, we see them, the 11 girl students of JNU, today are demanding. It is not the BJP that is demanding, it is not we that is demanding answers from them, but it is 11 girl students who have raised their voices very courageously, who are seeking an answer from Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and the Congress party as such. So therefore, we stand by the 11 children. We are voicing the concerns of the 11 girls who have raised their voices. And just as has been outlined, we have started with our demonstrations. We have gone to the Women Commission. We have sought justice from the Honorable Speaker. And I'm sure the Honorable Speaker will take our plea into consideration and will definitely look into doing justice to these 11 girls. Thank you.
1: थैंक यू. अब सारे विषय को हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, हमारी बहन रूप कुमारी चौधरी जी सारे विषय को लेकर अपने विषय को रखेंगे. माननीय रूप कुमार चौधरी जी,
2: आप सभी को नमस्कार. पिछले दिनों जो जेएनयू में घटना हुई थी, वास्तव में वह एक शर्मसार करने वाली घटना थी. जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर बिमोल अकोइजम और मणिपुर से कांग्रेस का सांसद जिस तरह से 11 युवतियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, सेक्सुअल हरासमेंट किया था, यौन उत्पीड़न किया था, यह घटना हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित करने वाली घटना है. आज तक हमारे इतिहास में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखी नहीं गई थी. लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज उन युवतियों के लिए, उन बेटियों के लिए वो क्यों लड़ने के लिए नहीं आ रही हैं? आज तक क्यों चुपचाप बैठी हुई है? जबकि आंतरिक रिपोर्ट में पूर्ण रूप से वो दोषी पर करार दिया गया है, दोषी पाया गया है और वहां से उसको बर्खास्त भी किया गया है. उसके बाद भी जो इसमें पैट्रियार्की की बात करता है राहुल गांधी जी, वो आज तक चुप बैठे हैं. उन बेटियों के पक्ष में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, बल्कि उनको वो संरक्षण दिया हुआ है. जो एक बिमोल अकोइजम अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति भी मानता है और कांग्रेस का पूर्ण रूप से उसको संरक्षण भी प्राप्त है, उन बेटियों को हमें समझना होगा कि जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने शिकायत की, क्योंकि आज उसी कॉलेज में वो अध्ययनरत हैं और उनके साथ आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, तो उनके संरक्षण की भी हमें चिंता है. और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उन बेटियों के साथ न्याय हो, उन बेटियों का सम्मान हो और उन बेटियों को संरक्षण भी प्राप्त हो. और इसके लिए हमने सड़क पे आंदोलन भी किया. 12 तारीख को हम राजधानी दिल्ली में भी हमने प्रदर्शन किया. हमने 10 तारीख को पूरे प्रदेशों में भी प्रदर्शन किए कि ये कांग्रेस पार्टी ऐसा, जो उनके पार्टी का नेता है, जो कांग्रेस पार्टी से सांसद है, उसके खिलाफ कुछ बोले, अपने पार्टी से उसको निष्कासित और निलंबित करे, लेकिन चुप बैठा है. पूरे देश के पूरे जिलों में भी प्रदर्शन हुआ. और इसके साथ साथ हम महामहिम राष्ट्रपति जी से 13 तारीख को एक डेलीगेशन भी मिला, उन बच्चियों को संरक्षण प्राप्त हो. 14 तारीख को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जी से भी मिले. और आज सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी से भी मिले कि देश के ऐसे पवित्र सदन पे जो इस तरह का आरोपी व्यक्ति है, जो गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित करने वाला व्यक्ति है, उसको ऐसे पवित्र सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है. और कांग्रेस पार्टी आज तक उसको संरक्षण देकर के न उसके बारे में कोई विचार कर रहा है निष्कासित करने, निलंबित करने का, और बल्कि उसको और प्रोटेक्शन दे रहा है. अभी अभी कुछ ही दिनों में आपने देखा कि महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार कांग्रेस पार्टी के नेता और जैसा कि मुखिया का जो रवैया होता है उसी को देख के उसके अगल बगल वाले भी वही हरकत करते हैं, और पिछले दिनों बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें वहां पे जो प्रदर्शन कर रही थी उनके साथ भी उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह ने जिस तरह से दुर्व्यवहार किया उसको भी सबने देखा है। उसके साथ साथ एक आंदोलन प्रदर्शन के दौरान महिला कांस्टेबल के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ साथ आपने देखा कि एक पत्रकार बहन के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाली ऐसी कांग्रेस पार्टी जो अपने पार्टी के ऐसे कलंकित सांसद को भी प्रशय दे रहा है, आज हम उन बहनों की उन बेटियों की संरक्षण के लिए उनके न्याय के लिए उनके साथ के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सारी बहनें हम खड़े हैं, और आने वाले दिनों में संसद सड़क से संसद तक हम उन 11 बेटियों के साथ हम खड़े हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आप सभी का।
3: 100%. All right, so the BJP are seeking strong action against a Congress MP making a pointed demand, saying that they demand nothing less than expulsion of Okaijum from the Congress party. That being said, note, Delhi police has already issued a notice to Okaijum. Former JNU professor has been asked to join the probe. 11 female students had lodged complaints against the Congress MP. This was in the month of May. They had accused the Congress leader of sexual harassment. He's accused of making lewd remarks in class. Also, JNU internal inquiry led to Okaijum's dismissal as a professor. Cops registered FIR against Okaijum on Sunday, after which he was summoned by the Delhi police. Notably, while Okaijum has dismissed charges, the Congress still remains silent. Something which has been rigged up by the BJP, questioning as to why is Priyanka Gandhi Vadra and Rahul Gandhi silent on the charges that are faced, that have been levelled against the Congress MP. Let's also quickly tell you about the JNU internal inquiry about the Congress MP. It says that the Congress MP Okaijum had asked students about their boyfriends. He had also asked about sexual activities at Viva and had demanded hand-holding as well. We have Ishwara joining us for more on that. Ishwara, while the BJP has made a very specific demand asking for the expulsion of the Congress MP and has also questioned as to why the BJP is, beg your pardon, why the Congress is silent at this point, talk to us once again about the internal inquiry against the Congress MP after which he was suspended as a professor by the JNU.
4: Samiksha, these are very serious and grave allegations that have been leveled by students of Jawaharlal Nehru University. In fact, 11 students have filed a complaint with the JNU, to which the internal committee was set up by the JNU, in which he was found guilty and later he was removed from the professorship of Jawaharlal Nehru University. And post that, it was Bharatiya Janata Party who stated, because the JNU committee had already made him guilty in this case and have removed, we are asking for termination of his membership from the parliament, and also demanding the matter to be sent to the ethics committee of the parliament so that an inquiry in the parliament can also be conducted against the Congress Manipur MP, Mr. Bimol. Now, it is the Bharatiya Janata Party who has been escalating this attack since the committee findings found him guilty. First, they tried to girao the AICC headquarters, demanded Rahul Gandhi's silence to be stopped, and something that Congress Party should take action against the Congress MP. Post that, they also went to meet the President of India at the Rashtrapati Bhavan, submitted a memorandum and demanded an expulsion. Today, it was Lok Sabha Speaker where these delegations, members of the Bharatiya Janata Party, women MP, met and asked him to take appropriate action against the Congress MP. Now, as you asked about the findings and the allegations that these students have levelled, it was a sex for marks scandal. It was alleged that sexual favors have been asked by this Congress MP to these students from these students, and perhaps it was also during a viva, and he was also calling these students to his residence as well. It has to be seen what action Lok Sabha Speaker takes and whether the Congress speaks on that issue.
3: All right, Ishwara, we will keep coming back to you. So the BJP at this point are demanding the expulsion action against the Congress MP. And that being said, the party has also questioned as to why there is radio silence on part of the Congress against his MP who faces such serious charges. Meanwhile, a major political storm, which has now, of course, erupted over allegations of sexual harassment at JNU. Former JNU professor and Congress MP Bimal Akoijum has been summoned by Delhi police, and this to join the probe and present his side as well. BJP MPs have also met Lok Sabha Speaker Om Birla seeking action against the Congress MP. The delegation has reportedly demanded his termination, which we now heard in the briefing as well, while the matter has been referred to the ethics panel. The ABVP has staged a protest in this matter, questioning why it calls what it calls the Congress silence on these grave allegations. The case note stems from complaints by female students, in fact, as many as 11 female students, and an internal inquiry that was conducted, which eventually led to the professor's dismissal from the JNU. These allegations include remarks, cross remarks in class, inappropriate conduct, and this was during viva examinations, and demands for sexual favors as well. Akoijum has dismissed the allegations as nothing but a witch hunt. Meanwhile, the BJP is upping the ante, questioning why is the Congress silent and has not taken any action so far against the leader.
5: Bhajpa Mahila Morcha aur usi ke saath saath राज्यसभा की और लोकसभा की सांसदों द्वारा निवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जेएनयू के जो प्रोफेसर है, जो सांसद भी है, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट के अनेक आरोप हैं। और उनके बारे में आज उनके खिलाफ उन्होंने हमें यहाँ पे निवेदन दिया है। कमीशन का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए कमीशन इन विषयों का संज्ञान लेगा और उसी के साथ साथ उचित निर्णय भी करेगा।
6: 11 से अधिक छात्राओं ने आईसी में प्रोफेसर बिमोल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था, और जैसे विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90 दिनों के अंदर उस केस पे रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए था, लेकिन सितंबर का महीना आ गया था और कोई उस पर कार्रवाई तक नहीं हुई थी। तो एबीवीपी को मीडिया के माध्यम से ही इस केस के बारे में पता लगता है, और तब तक तो ये भी नहीं पता था कि इस केस में प्रोफेसर बिमोल शामिल है। तब एबीवीपी ने इसके खिलाफ में प्रदर्शन शुरू किया था, बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर बिमोल है, तो हम लोगों ने प्रदर्शन में पुतला दहन करना, मार्च निकालना, क्लास टू क्लास कैंपेन, मैस कैंपेन, जितना हो सकता है उस तरीके का विरोध हमने प्रदर्शन किया, और तब जाके इस पर प्रोसीडिंग हुई है आईसी की। और अक्टूबर के मंथ में अभी कुछ दिन पहले ही आईसी की जो प्रोसीडिंग की रिपोर्ट आती है, और उसमें प्रोफेसर बिमोल को गिल्टी माना जाता है, गिल्टी प्रूव होते हैं वो।
7: He himself admitted that he has 15 cases on him about sexual harassment. He has harassed 11 girls inside the campus of JNU, inside the classrooms, inside the four walls of the classrooms. And he is roaming around in no dissent, no regret, nothing at all.
3: All right, shifting focus to the other big story that we are tracking from the state of Maharashtra. It's actor Imran Khan, a nephew of Amir Khan, who has been directed to leave India by 28th of October, and this is following a notice that was issued by the Mumbai Foreigners Regional Registration Office. This action against the actor comes after Imran Khan had participated at a protest march. This was at Mumbai's August Kranti Maidan, demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Mumbai police say that action has been initiated under the relevant immigration law, and that is because the actor is not an Indian citizen. The development also follows a complaint by BJP leader Kirit Somaiya, who has alleged violations of OCI rules and questioned the actor's participation in the protest. In fact, he is the complainant in this case. This case...

0: final scrub.
1: And this is where the story gets really interesting, because our challenge sirf information ki kami nahi hai. The bigger challenge is the behavior gap. Most of us know ki hame haath dhone chahiye. Children also know it. To shayad sawal sirf ye nahi hona chahiye ki how do we teach children hand washing? Bada sawal ye hai. How do we design their everyday environment so that washing hands becomes almost instinctive? Ek habit ban jaye. ताकि बच्चों को बार बार याद दिलाना ना पड़े और हैंड वॉशिंग उनकी डेली रूटीन का नेचुरल हिस्सा बन जाए. एंड समटाइम्स दैट जर्नी स्टार्ट्स विद समथिंग सरप्राइजिंगली सिंपल, एक बिल्डिंग ब्लॉक. एंड फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक वी मूव टू द बिल्डिंग इटसेल्फ. अ सिंक इजंट सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ हाउ अ चाइल्ड लर्न्स एंड प्रैक्टिसेस हाइजीन. ईच इंटरैक्शन प्रोवाइड्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू रीइंफोर्स द बिहेवियर.
2: तो नॉर्मली बच्चे तीन तरीके से सीख सकते हैं, या तो देख के, सुन के, या कुछ हाथों से करके. पूरे कैंपेन में हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हमारे पास वर्कशीट्स है, ऑडियो वीडियो है, बट एक टैक्टाइल एलिमेंट मिसिंग था जो हम ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स के थ्रू उसको कंप्लीट कर रहे हैं. और जितनी चीज़ें हम हाथों से करेंगे उतनी चीज़ें हम ज़्यादा टाइम तक रिकॉर्ड कर पाएंगे और उसको हम ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे. तो एक टैक्टाइल एलिमेंट मिसिंग था जिसको हमने यहाँ पूरा किया है और जिससे जो लर्निंग है या जो सीख रहे हैं वो ज़्यादा टाइम रह पाएगा. सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ मेकिंग इट अ टैक्टाइल एक्सपीरियंस. सो व्हाट यू एक्चुअली सी हियर इज दैट वीव प्रीटी मच मेड द होल हैंड वॉशिंग एक्सपीरियंस, जिसे हम कहते हैं हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वो सारी चीज़ों को हमने एकदम टैक्टाइल बना दिया है. आप अगर देखोगे को बच्चों ने ये डेटॉल के सोप्स बनाए हैं एंड ही इज एक्चुअली मेकिंग वन. यही है कि ये हम सीखते हैं कि हैंड वॉश करना है, सोप है, बट क्या हम इसको खुद बनाएं? हमारा जो सोप जिसे हम यूज़ करते हैं क्या हम उसे बनाएं? तो ये एक आइडिया था कि हम डेटॉल के सोप बनाएं विद ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स.
1: नाउ थिंक अबाउट इट, जब आप 5, 6 या 7 साल के होते हैं तो आपको क्या ज़्यादा याद रहता है? किसी ने आपको एक डेफिनेशन समझाई, या फिर समथिंग यू बिल्ड, या आपने किसी चीज को छुआ था, गाने गाए थे, यू प्लेड और प्रैक्टिस्ड योरसेल्फ. ऑफ कोर्स व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस समथिंग देमसेल्व्स इट ऑफन स्टेज विद देम लॉन्गर. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर पावरफुल वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, वो है स्टोरी टेलिंग. Hygiene education doesn't always need a blackboard. Sometimes it can have music, sometimes puppets, sometimes a story. Vitol Banega Swasth India is using folk music and puppetry to communicate messages around hand washing, school hygiene, home hygiene, and neighborhood cleanliness. The medium changes, the health message remains. Because when children enjoy what they are learning, education stops feeling like instruction and becomes an experience. And that's what takes us from lecture pedagogy to practice pedagogy. But behind all the innovation is a serious public health purpose.
3: The DBSI, or the Dettol Banega Swasth India program, is now into 13 years. And the reason why it has got such a long run is possibly because some of its out-of-box innovative ideas. For example, they constantly interact with children, making new methods, hygiene accelerators and other issues. That's a very innovative thing because it fills the gap of hygiene where health is concerned. And I think making children aware of hygiene, linking hygiene to health, that hygiene will improve their health, improve their studies, improve their school attendance, improve their nutritional status, is something which is very important to inculcate to the children's mind at this age, because this is going to stay with them for their entire lifetime.
1: So how do we turn a health message into an everyday habit? Sometimes by changing the way we teach it, from learning through play to turning the school itself into a learning tool. Hygiene education is getting increasingly innovative. What if the walls, floors, and corridors of a school could teach children about health? That is H. Bala, Hygiene Building as Learning Aid. It transforms everyday school spaces into interactive learning tools using games, puppetry, and hands-on activities to teach five areas of hygiene, from personal and home hygiene to school illness and neighborhood hygiene. Built around the six C's of curriculum, communities, collaboration, campus, connect, and children, the idea is to move hygiene education beyond lectures. Because children don't just learn by listening, they learn by seeing, playing, practicing, and repeating. And that's how a lesson begins to become a habit. And over time, these small actions build one child, one classroom, one school, one family. Because her innovation, her lesson, or her habit, ka ultimate goal sirf ek hi hai. So that we can give better health in more hands every day. So is Global Hand Washing Day, let's go beyond simply telling people ki wash your hands. Let's ask the real question. Kya hum sahi tarike se apne haath dho rahe hain? Right moments par dho rahe hain? And most importantly, kya hum hand washing ko apni everyday life ka itna natural part bana rahe hain ki kisi ko hame remind hi na karna pade ki hame haath dhone hain? Kyunki public health sirf hospitals mein nahi banti. It can begin at a school se. Ek classroom mein shuru ho sakti hai. Ek game ke zariye hum seekh sakte hain. Aur ek story se bhi. Sometimes it begins with something as simple as a child learning to wash their hands. Because healthier habits today can build a healthier tomorrow. The solution sounds incredibly simple. Two hands, soap and water. A few moments, but the bigger story isn't merely

0: how it is unfair to give Imran Khan such a notice to leave the country. She also questioned that the chief minister, who has allegations against him, yet he remains in position.
1: Look, it's not for me or our party to comment on Imran Khan, but do understand that if there is somebody who is of foreign origin or a foreign citizen who chooses to be a part of a political protest, and if the papers are not in sync, then I think it's for law to take its course. It's not for us to comment on this. Let the Ministry of Home Affairs look at all the various avenues and then come up with what the official statement is. He's gone to court, and let the courts decide. But having said that, please understand that this so-called Andolan was for what? For a constitutional right, which is to ensure that the SIR is a clean-up process to strengthen a democracy. And you have chosen to be a part of the foreign agenda, which is to destabilize India. So I think a little bit of soul-searching and introspection is also required.
0: All right. Thanks so much for joining us. So Shaina NC, they're reacting to these developments and to Supriya Sule saying it is wrong for us to ask Imran Khan to leave the country, this exit India order that he's been given. Let's go across to Sujata for more on this. And Sujata, so, understandably, politics also breaking out with Supriya Sule questioning this move by the Delhi police, saying that, you know, just because he was there at the march, how can you ask him to exit the country? Also, you know, raising these points about how the BJP has certain cases against him, but he remains in his position.
2: Well, that's right. Politics has begun to surround here in Imran Khan's case of deportation, which he has been asked to leave the country by 28th of this month. Supriya Sule, an MP from Baramati, has now commented stating that there could have been the privacy as well as the right to protest could have been respected in this case. And also she has stated that this matter could have been handled more amicably. In that case, Supriya Sule did not just stop there. She also went on to comment and talk about the accountability, stating that people who are accused of murder and rape today have gone on to become chief ministers. And for that reason, we know that Supriya Sule as well as the opposition together have been supporting these protests that have been held lately here in the city as well as the state. And here this time, Supriya Sule, on the action which has been taken against Imran Khan, she is now told that this matter could have been dealt with more amicability, and also that Imran Khan being asked to leave the country is not how a celebrity or any person who is in the public eye should have been dealt with. Over to you.
0: All right, Sujata, thanks so much for joining us with those details. So Imran Khan, asked to leave the country after participating in the October 10th march or in October 10th protest that was called by the Cockroach Janata Party against the Chief Election Commissioner. And now Supriya Sule and politics also taking place. Supriya Sule questioning this move. All right, moving on to other news now, and the BJP has shared a video of ISA President Neha Bora where she's talking about the Bangladesh protest. Remember the students' protest in Bangladesh. Now, in this video, she's praised Gen Z movement of Bangladesh and said that those protests inspired her and showed her a way. She also expressed solidarity with Bangladesh's Gen Z movement. The BJP alleges the message signals support for regime change in India. The BJP alleged that Neha Bora and Rahul Gandhi are leading protests against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to disrupt democracy in India and for a regime change. Our Congress leaders have backed Neha over the issue and said the BJP invoking the democracy that we are fighting to save, whereas the CPI has said that we don't take inspiration from Bangladesh stir, but from our own freedom movement. Meanwhile, outrage grows over YouTuber Dhruv Rathi's remarks, saying that the cops and army should also raise their voice together, hinting at an armed resistance.
3: We present you our red salute, and we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
4: जो राहुल गांधी का विचार है वही नेहा बोरा का विचार है और ये नेहा बोरा ने कल एक इंटरव्यू में कहा जो आपके सामने मैं इस वक्त रख रहा हूं कि ये इंस्पायर्ड है बांग्लादेश के आंदोलन से और जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ ठीक वैसा ही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हो। ध्यान से देखिए ये नेहा बोरा के शब्द हैं परंतु विचार राहुल गांधी के हैं क्योंकि एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे नेहा बोरा को अप्रोप्रिएट राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही नेहा बोरा कह रही है कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा अराजक जेंजी आंदोलन वो चाहते हैं बांग्लादेश जैसा अराजक जेंजी आंदोलन वो चाहते हैं। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी जब लोकतांत्रिक रूप से अपने परिवार को सत्ता में नहीं ला पा रहे हैं तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं। ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एनार्किक मार्च है और एक एनार्किक रिवोल्ट है।
5: नेहा बोरा हैज पेरिलसली स्टेटेड दैट शी वाज इंस्पायर्ड बाय द रेजिम चेंज इन बांग्लादेश इंसिनुएटिंग अ डिजायर टू रेप्लिकेट द सेम इन इंडिया। Earlier we had seen Prashant Bhushan saying there was no other option but bloodshed. Rahul Gandhi and his cohorts, their anarchic agenda seems to be to subvert our constitution, destroy democracy and somehow grab power by hook or crook.
6: Bharat Loktantrik तरीके से ही आज एक है और भविष्य में विकास के ओर अखंडता और एकता के साथ बढ़ता रहेगा। इस तरह के मतलब बचकाने बयान देकर देश में एक अराजकता फैलाने की, और ये तो एक विचारधारा की ही बात है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। अब युवक हैं, शायद देश को पूरी तरह समझे नहीं है, अनजान है, और ऐसे तो खैर ठीक है कई आते हैं बोलते हैं, मगर आज भी पूरे 145 करोड़ देशवासियों को अपने वोट का अधिकार हमारे संविधान के आधार पर मालूम है और उसका ठीक उपयोग करके ही इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखते हैं।
7: बीजेपी हैज अ स्क्रिप्ट राइटर्स एंड नैरेटिव सेटर्स व्हिच दे जस्ट डू बिकॉज दे डू नॉट हैव आंसर्स टू ऑल दोज रेलेवेंट क्वेश्चंस, ऑल दोज रेलेवेंट इश्यूज व्हिच द स्टूडेंट।
0: All right, let's go across now to where BJP leader Gaurav Bhatia is addressing a press conference. Let's listen in.
8: दोहरे मापदंड कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अराजकता और संविधान को तार तार करना। जहां नवरात्रों की हमने बात करी, देवी स्वरूप को पूजा जाता है, वहां महिलाओं की अस्मिता की जब बात आती है तो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़, वर्दी पहने हमारी बहनों को गलत तरीके से छूना, ये कौन करता है? ये अराजक, संविधान विरोधी, केवल और केवल अपने उपनाम से जाने वाला गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करता है। सबसे पहले आज कई मामले सर्वोच्च न्यायालय में लगे थे, एसआईआर का जो ये बताते हैं प्रदर्शन, उसको लेकर कुछ याचिकाओं में मैं भी वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। कुछ बात तथ्यों की करेंगे और कुछ जानकारी आपको दूंगा जो सर्वोच्च न्यायालय में हुआ। सबसे पहले बहुत जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, संविधान को पढ़िए, प्रदर्शन का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या प्रदर्शन का अधिकार अपनी सीमाएं पार करके संविधान की परिधि के बाहर जाके किसी भी जगह पे, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो रोड हो और चाहे सर्वोच्च न्यायालय का प्रांगण हो, यह अधिकार किसी को देता है कि वो गुंडागर्दी करे, नारेबाजी करे? डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं। अ प्रोटेस्ट हैज टू बी पीसफुल, अ प्रोटेस्ट हैज टू बी लीगल, दैट देयर इज प्रायर परमिशन टेकन, एंड अ प्रोटेस्ट हैज टू बी एट अ डेजिग्नेटेड साइट। दिस इज द लॉ ऑफ द कंट्री, ये भारत का कानून है संविधान के तहत, और तमाम सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है कि कोई भी प्रदर्शन होगा तो वो अहिंसा पूर्वक किया जाएगा, दूसरा अनुमति ली जाएगी, तीसरा वो केवल और केवल चिन्हित जो प्रदर्शन स्थल हैं वहां पे होगा। 10-11 तारीख को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते हैं हम प्रदर्शन करते सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अब ये पूछना पड़ेगा ये किस तरह की हरकत थी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। सर्वोच्च न्यायालय का प्रांगण हो या उच्च न्यायालय का प्रांगण हो, यहां पे न्याय होता है, ये न्याय का मंदिर है। क्या भीड़ तंत्र चलेगा? क्या लोग इकट्ठा करके न्यायपालिका को, भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष और जनता इस पे विश्वास करती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था? क्या ये संवैधानिक था? पहला प्रश्न। क्या एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष और मैं तो कहूंगा एक नागरिक भी इस तरह की हरकत कर सकता है? और इसका उत्तर केवल एक है, कोई जिम्मेदार नागरिक ऐसी घिनौनी, गैर संवैधानिक, अवैध हरकत तो क्या करेगा, वो सोचेगा भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा ही कुछ किया और तमाम वीडियो सामने आए जिसमें राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक देर रात, जब सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य की अवधि है वो खत्म हो चुकी थी, वहां जाते हैं, नारे लगाते हैं। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पवित्र प्रांगण को धरना स्थल में परिवर्तित करने का प्रयास एक अराजक नागरिक, नेता प्रतिपक्ष, गैर जिम्मेदार व्यक्ति राहुल गांधी ही कर सकता है। और बड़ी गंभीरता से मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा, यह पहला बिंदु है, याचिका लगी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, राहुल गांधी इस याचिका में बाय नेम इंप्लीडेड है, पार्टी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें नोटिस इश्यू किया है। और एक अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते एक बात मैं और बता दूं, जैसे ही ये गुंडागर्दी राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में करी, जो अधिवक्ता साथी होते हैं सजग होते हैं, संविधान की रक्षा करने वाले होते हैं, हमारे तमाम साथियों ने एक ज्ञापन जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें हस्ताक्षर करके दिया कि ये जो कृत्य किया गया है ये बहुत ही गंभीर है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि उस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है, नोटिस किया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण के अंदर इस तरह की हरकत जिसको हम अराजक कह रहे हैं कैसे कर सकते हैं, कृपया उत्तर दीजिए। और जब मैं ये बात उठाता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, एक बात और कहूंगा, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मतलब है संविधान विरोधी पार्टी। इनका केरला यूनिट है कांग्रेस का, वेरिफाइड एक्स हैंडल है, देख लीजिए। जैसे ही ये हरकत ऐसी करते हैं, और हम सब जानते हैं किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है संविधान में, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करती हैं, नेता प्रतिपक्ष ने मिलने का समय मांगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और संविधान की परिधि में रहते हुए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उत्तर भी दिया। लेकिन केरला कांग्रेस ने क्या लिखा, डियर सूर्यकांत, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए था, लेकिन लिख क्या रहे हैं, डियर सूर्यकांत, और नीचे लिख रहे हैं इफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट योर डोमेन रिजाइन नाउ, वी विल फाइंड योर रिप्लेसमेंट हु कैन हैंडल इट। ये धमकी, ये सोच, और ये राहुल गांधी के इशारे पे नहीं हुआ है क्या? जब ये पोस्ट सर्कुलेट हो गया तो जो कांग्रेस पार्टी की आदत है, पहले नुकसान करो फिर भाग जाओ, बताते हैं उसके बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। इसके साथ दूसरा मुद्दा जो आज सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ संवैधानिक प्रश्न हैं और ये हर नागरिक पूछ रहा है और खासकर राहुल गांधी से हम भी पूछ रहे हैं। आप स्मैश द पैट्रियार्की कहते हैं, आपको बहुत शौक है महिला सम्मान की बात करें, लेकिन महिला सम्मान सीमित रहे केवल गांधी परिवार की महिलाओं तक। मैं अपनी बात रखूं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके वो वीडियो चलाइए, ये वीडियो आप देखिए और फिर मैं कुछ संवैधानिक प्रश्न जो उठ रहे हैं जिसपे आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश पारित किया है मैं आपके समक्ष रखूंगा। रोक दो एक मिनट, रोको। महिला प्रोटेस्टर की अस्मिता बहुत जरूरी है, प्रोटेस्ट करने का राइट हर नागरिक को है, और यह भारतीय जनता पार्टी है। हमारे विरोध में, हमारी विचारधारा के विरोध में भी कोई प्रोटेस्ट करता है तो भी वो हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह भी

महिला पुलिसकर्मी को एक पुरुष इस घटिया तरीके से कैसे छू सकता है? द राइट टू डिग्निटी, द राइट टू लिव विद ऑनर ऑल्सो बिलोंग्स टू विमेन पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो, एंड इट इज शेमफुल इंडीड दैट लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज इन अप्रोप्रिएटली टचिंग अ लेडी पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ. वन, इट अमाउंट्स टू वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन पुलिस ऑफिसर एंड नो एक्सप्लेनेशन हैज कम फॉरवर्ड सो फार फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी. द कांग्रेस इज साइलेंट. Smash the patriarchy is reduced to a slogan and they violate the dignity of our sister. This woman, police officer, every citizen is proud of. Hame garv hai apni behan pe jo apni duty kar rahi hai. Jab police karmi ke saath aap is tarah ka vyavhar karte hain, use galat tarike se chhute hain, ये कितना उचित है? हमारा संविधान कहता है एवरी वन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. पहला प्रिंसिपल है. आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द राइट टू लिव विद डिग्निटी. द पुलिस लेडी ऑफिसर इज डूइंग हर जॉब. ये तीनों प्रिंसिपल्स पे मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी क्यों छूते हैं लेडी ऑफिसर को और गलत तरीके से क्यों छूते हैं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है. महिला के लिए महिला पुलिसकर्मी आएगी तो महिला पुलिसकर्मी के लिए भी आप प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करते, किसी और प्रोटेस्टर को आगे करते, वो बात करती. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है राहुल गांधी किसी महिला की और खासकर महिला पुलिसकर्मी की भी इज्जत नहीं करते हैं. और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, एक और याचिका सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हुई थी, इस मामले को उजागर किया गया दैट व्हाट अबाउट द डिग्निटी ऑफ विमेन पुलिस ऑफिसर्स एंड कैन एनीबडी इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी टच a lady police officer inappropriately violating her dignity. One, two, obstruct a police officer, male or female, from doing her duty, which is a crime under the penal provisions of our country. Kya ye Rahul Gandhi ka hi charitra hai? Sawal. Main request karunga, isi video ko aage jari kariye. आप देखिए छुआ कैसे जा रहा है. हाँ, आगे आगे बढ़ाइए. अब ये देखिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए. ये पीछे जाएंगे अगर थोड़ा सा. ये दूसरा वीडियो क्यों दिखाया? ये केवल राहुल गांधी की बीमारी नहीं है, ये इनकी मानसिकता है. हम गैंडी परिवार हैं, गैंडी कानून से ऊपर हैं. अस्मिता महिलाओं की होती है, लेकिन अगर वो गैंडी परिवार की हो, अगर वो गैंडी परिवार की नहीं है तो उनकी कोई अस्मिता नहीं है. उनको कोई हक नहीं है कि वो इज्जत से अपना फर्ज निभाएं. कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, और ये विजुअल्स चल रहे हैं, एक महिला पुलिसकर्मी को मारती है, कोनी मार रही है, धक्का दे रही है, और एकदम से उनकी जो जेड प्लस सुरक्षा है वो एक घेरा बना के उन्हें बचा लेती है. मेरा सवाल ये है, आपने तो लेडी पुलिसकर्मी को धक्का मारा, आपके सुरक्षा

0: मेरे ने आपको तो बचा लिया, लेकिन कहीं शर्मिंदगी हुई प्रियंका गांधी वाड्रा? आप भी तो सांसद नेत्री हैं, आपके मन में यह नहीं आया कि एक महिला पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी कर रही है उसको मैं धक्का मार रही हूं और धक्का मार के मैं अपने सुरक्षा घेरे में खड़ी हो जाती हूं? ये चिंताजनक व्यवहार आपने देखा राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों। अब जब नेता इस तरह का व्यवहार करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो जो कांग्रेस का कार्डर है, जो बाकी विपक्षी दल साथ में खड़े हैं, उनके मन का भाव क्या होगा? उनके मन का भाव भी यही होगा कि हमें यह हक है कि हम पुलिस के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, खराब व्यवहार करें, महिला पुलिस कर्मियों के साथ मोलेस्टेशन करें। और मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि अगर किसी भी महिला को गलत तरीके से छूना या छूना जहां उसकी मर्जी ना हो, दिस इटसेल्फ अमाउंट्स टू सेक्सुअल मोलेस्टेशन। ये बड़े सवाल आज भारत की जनता पूछ रही है और इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस इश्यू किया है इस याचिका पे भी। तो मैंने आपको बताया दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, राहुल गांधी की गुंडागर्दी, पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग, जुलूस निकालना, उस पे भी नोटिस है, और महिला पुलिस कर्मियों की जो डिग्निटी है उसको किस तरह से वायलेट कर रहे हैं और उनके जो मूल अधिकार हैं उनका क्या, क्या कोई प्रदर्शन चल रहा है? और ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेल फीमेल दोनों, और महिला पुलिस कर्मी है, तो उनके फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, गलत तरीके से छू सकते हैं, कोनी मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न है। और इसके बाद मैं ये भी कहूंगा, ये देखिए तस्वीर है जो याचिका का हिस्सा थी, मैं लेके इसीलिए आया हूं। ये महिला पुलिसकर्मी है, ऐसा उत्पीड़न किया सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने कि वो बेहोश हो रखी है, उसको उठा के ले जाया जा रहा, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भाई वो ठीक रहे। ये एक और हमारी बहन है वर्दी में, ये सब पिटिशन से ही लाया हूं, ये एनेक्सर P4 page 41। ये इसलिए है कि सच्चाई छुपती नहीं है, तथ्य रखे जाते हैं, हवा हवाई बातें नहीं की जाती है राहुल गांधी की तरह। ये देखिए कैसे महिला पुलिसकर्मी के साथ हिंसा की गई है। इसी तरीके से ये एक और है हमारी महिला पुलिसकर्मी बहन, उसके बिल्ले उखाड़ दिए जाते हैं, जो सम्मान है उसका, जो दशकों की मेहनत के बाद एक पुलिसकर्मी आर्मी के ऑफिसर्स को मिलता है, उखाड़ दिए जाते हैं। ये क्या है? क्या इस पे बातचीत नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
1: The BJP, they're hitting out at Rahul Gandhi over his alleged manhandling of a female cop as well as a journalist, and saying that the Gandhis think they are above the law. Also accusing Priyanka Gandhi Vadra of hitting a woman police officer, saying her dignity has been violated. The BJP hitting out at the Gandhis over this. We'll slip into a short break. More news coming up on the other side.
2: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
3: Also,
2: the police action. Taking questions where they matter most.
3: The question is language.
2: Urgent, exact, empathetic.
4: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
2: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. weekdays 8 p.m.

0: PM only on NDTV when it really matters.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
5: यू नो डिजाइन्स कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोज,
6: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
7: एक परिवार, अटूट भरोसा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट प्राइम मिनिस्टर

लगातार परिश्रम ये अनिवार्य होता है। साथियों, भारत ने भी बीते 12 वर्षों में बहुत धैर्य और परिश्रम के साथ अपने स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पर बहुत लगन से काम किया है। आप देखिए, एक समय बड़े टूर्नामेंट में भारत केवल गिने चुने मेडल्स ला पाता था। कितने ही खेलों का तो देश में पता ही नहीं होता था कि ये भी खेले जाते हैं। पहले ओलंपिक जैसा इतना बड़ा इवेंट होता था और आधे से ज्यादा खेलों में हमारे देश का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। आप सोचिए, अगर हम कम्पीट ही नहीं करेंगे तो मेडल कहां से लाएंगे? साथियों, हमने ये संकल्प लिया, हम इस निराशावादी मानसिकता को हटाएंगे और नतीजा ये है कि आज हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। साथियों, देश में ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया है उसी स्पिरिट से जिसकी बदौलत आपने सफलता हासिल की है। बीते 10-12 वर्षों में देश ने लगन निष्ठा से निरंतर प्रयास किए, एक दूरगामी विजन के साथ काम किया, खेलों के लिए एक पारदर्शी और आधुनिक इकोसिस्टम बनाया। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की, हमने खेलो इंडिया स्कीम शुरू की, समय के साथ इसका दायरा और व्यापक बनाया। खेलो इंडिया के विस्तार और स्पोर्ट्स फेडरेशन को मजबूत करने के लिए, जैसा अभी मनसुख भाई ने बताया, 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट किए हैं। साथियों, आज देश में 1,000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं, स्टेडियम और मिनी स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल स्पोर्ट्स के लिए तैयार किए हैं, एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, स्विमिंग पूल, हजारों ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे बड़े शहरों में बन रहे हैं। इस स्कीम के तहत खिलाड़ियों को भी सीधे मदद दी जा रही है, उन्हें आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया जा रहा है। टॉप स्कीम के तहत खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। अगर किसी खेल में कोचिंग के लिए देश से बाहर जाने की जरूरत है तो सरकार उसे भी फैसिलिटेट कर रही है, उसके लिए आर्थिक सहायता दे रही है। साथियों, युवाओं को खेलने और कम्पीट करने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए विंटर गेम जैसे इवेंट शुरू किए, सांसद खेल प्रतियोगिताएं शुरू की गई, देश ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो भारत नई नीति बनाई, हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनके लिए भी खेलों में बेहतर अवसर और आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है और इसलिए ही

आज हर खिलाड़ी को ये भरोसा होता है कि उसकी पूरी जर्नी में देश उसके साथ खड़ा है। और जब खिलाड़ी को ये एहसास रहता है तो वो देश के लिए क्या करके दिखाता है, आप सब खुद इसके उत्तम उदाहरण है। साथियों, इस बार एशियन गेम्स में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनकी उम्र 15-17 साल ही है। इतनी कम उम्र में इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है, देशवासियों का दिल जीता है। ये दिखाता है कि सफलता के लिए उम्र कोई बंदिश नहीं होती, बल्कि खेलों में तो कम उम्र से की गई शुरुआत एक एडेड एडवांटेज होती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान कम उम्र से ही हो। 5 से 15 वर्ष के बच्चों में खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनकी ट्रेनिंग पर हमारा विशेष फोकस है। आने वाले वर्षों में हजारों नए खिलाड़ियों को खेलो इंडिया और इमर्जिंग खेलो इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलेंगे। हमें आने वाली खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी को और मजबूत करना है। 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स है, 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा और 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करना भी भारत की आकांक्षा है। इसी को देखते हुए मैंने लाल किले से टैलेंट हंट अभियान चलाने की बात कही है। आज गांव गांव तक जाकर प्रतिभाओं को तलाशा जा रहा है और उन्हें तराशा भी जा रहा है। यही खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए मेडल्स लेकर आएंगे। साथियों, हमारे सपने बड़े हैं, हमारे संकल्प भी बड़े हैं और इन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास भी आज हिंदुस्तान के पास है, हर हिंदुस्तानी के पास है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, भारत में बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स, वी विल डू इट। भारत में बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स, भारत में बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स, टॉप स्पोर्टिंग नेशंस में भारत, ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बने भारत, भारत में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के हर कोने से एक चैंपियन। साथियों, एशियन गेम्स में हमारी सफलता देश के बदलते मिजाज का भी उदाहरण है। यह एक एग्जाम्पल है कि कैसे आज देश का युवा हर बुलंदी को छूने के लिए अधीर है। ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो भारत के युवाओं के हौसले से बड़ा हो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य के बाहर हो। संभावनाओं का असीम आकाश सामने है और मंजिल भारत का युवा खुद तय कर रहा है। इसलिए देखते ही देखते भारत आज दुनिया का तीसरा

बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे युवा आज स्पेस सेक्टर में अपनी कंपनियां बना रहे हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यही युवा डिफेंस सेक्टर में नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए प्रयोग कर रहे हैं। और ये बदलाव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। जैसे खेलों में आज दूर दराज की प्रतिभाओं को भी मौका मिल रहा है, वैसे ही आज स्टार्टअप, रिसर्च और दूसरे उद्यमों में भी छोटे शहरों और गांवों के युवा नए आइडिया लेकर आगे आ रहे हैं। इस आत्मविश्वास के पीछे एक बड़ा भरोसा है। बीते एक दशक में देश ने जो व्यवस्थाएं विकसित की है, उनसे युवाओं को भरोसा मिला है कि वे बड़े सपने देख सकते हैं। उन्हें विश्वास है कि उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए देश का पूरा सामर्थ्य उनके साथ खड़ा है। साथियों, हमारे प्रयासों का लाभ केवल मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। स्पोर्ट्स कोचिंग, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए नए कैरियर के अवसर बन रहे हैं। खेलों के विकास के साथ साथ इनसे जुड़े अनेक प्रोफेशन भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यम के नए रास्ते बने हैं। साथियों, आज हम जिस किसी भी फील्ड में हैं, हमें अपनी सफलता के लिए परिश्रम तो करना ही है, साथ ही नई पीढ़ी को गढ़ने की जिम्मेदारी भी उठानी है। अब आपके पास इंटरनेशनल टूर्नामेंट का भी अनुभव है और इसलिए मेरा आग्रह होगा, आप कुछ समय उन बच्चों को जरूर दें जो आपकी तरह आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। आपके पसीने से उनके सपनों को सींचना है। सफलता तब आती है जब भी अवसर मिले। अपने गांव, अपने शहर के बच्चों से मिलिए, अलग अलग स्कूलों में जाइए, जिस मैदानों पर आपने खेलना शुरू किया था वहां जरूर जाइए। आपके अनुभव उन बच्चों के बहुत काम आ सकते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी बात किसी बच्चे को खेलों में आगे बढ़ने का हौसला दे दे। साथियों, देश के युवाओं को आपसे केवल स्पोर्ट्स की ही प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि खेल की भूमिका केवल मैदान तक ही सीमित नहीं है। खेल हमें जीवन में अनुशासन सिखाते हैं, जीवन में गिरकर फिर से खड़े होने की, हार कर जीतने की सीख खेलों से मिलती है। एक लक्ष्य के लिए कैसे लंबे समय तक अटल रहना है, कैसे परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना है, स्पोर्ट से ये हमारे हर रोज के जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही स्पोर्ट पर्सन स्पिरिट जीवन भर काम आती है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, जो खेलेगा वो खिलेगा। आप भी खेलते रहिए, खिलते रहिए, आने वाली प्रतियोगिताओं और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए एक बार फिर मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपका ये उत्साह, ये आत्मविश्वास

0: ना ही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, आई डोंट स्टैंड ऑन एज अ रिप्रेजेंटेटिव.
1: Right, so that is what he had said, that I'm not part of any organization. I have just come here to, you know, to see what's happening and so on and so forth. Now, whether the court, I mean, takes a different view to what is happening, to happens to him, because on Monday, we are learning that he is going to file a petition through his lawyers. But reactions are coming in thick and fast as far as this story is concerned. Let's listen into some.
2: MOS home, Yogesh Kadam is with us. Because he is a celebrity, because he is an actor, he has been targeted, the question are being raised.
3: See, you can even think from other point of view. Because he's a celebrity, he maybe he decided to come and protest and maybe gain some fame. Hmm. I can also ask that. See, here the issue is very clear. If you are an American citizen, and you are participating in such act, while you were entering the country, you had taken a visa, and in that visa there were some conditions that there are some do's and don'ts, and you have to follow those. You cannot act up visa leke aa jaoge, you will enter the country and you will like just act haywire. It doesn't work like that. There are acts you have to follow, the visa conditions you have to follow, and if you violate these conditions, you'll have to face the notice. I think the notice which has been issued is regarding this only.
4: इमरान खान पाकिस्तान से पैसा रहा है, विदेश की ताकत और ऐसे विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र, इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है. ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी.
5: आंदोलन करायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आता म्हणे त्याला त्याचा फॉरेन पासपोर्ट आहे का काय. आता आमचे पण किती फ्रेंड्स परदेशात राहतात, तेही आंदोलन करतात तिथे. म्हणून त्या लगेच हद्दपार कोणी करत नाही, दुर्दैव आहे. एखाद्याला तुम्ही समाज प्रेमाने देऊ शकता, लोकशाही पद्धतीने प्रत्येकाचे काय अधिकार आहेत नाही आहेत याच्यावर चर्चा होऊ शकते, पण म्हणून एखाद्याला डायरेक्टली हद्दपार करणं का. तर त्यांनी आणि असा काय गुन्हा केलाय अहो या देशामध्ये, ज्यांनी हत्या केल्यात, बलात्कार केलेत, याज अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आहेत. आता कशाला मला बोलायला लावताय. एक मोठं राज्य आहे देशातलं, ज्याच्यामधल्या मुख्यमंत्र्यावर खुनाचे आरोप आहेत. मुख्यमंत्री ठेवलाय ना, यांनी तर बिचाऱ्यांनी आंदोलनच केलंय.
6: हमारे साथ है फिल्म मेकर अशोक पंडित साहब. बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी बात करने के लिए. फिल्म मेकर्स, आप फिल्म मेकर हैं, और मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगा कि इमरान खान अभी हाल ही में उनको जो पैरो है, उन्होंने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है, तो बतौर फिल्म मेकर, एज ए फिल्म मेकर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है?
7: देखिए, एज ए फिल्म मेकर जो है वो मुझे लगता है मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा इफ आई रिएक्ट एज ए सिटीजन. मुझे लगता है कि एज ए सिटीजन की वैल्यू ज़्यादा है, और जहाँ देश की बात होती है तो वहाँ पर फिल्म मेकर हो चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, हालांकि सोच वही होनी चाहिए. क्योंकि मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, लॉ जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. और कोई भी इसको तोड़ने की कोशिश करे या इसको अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करे, तो उसका उसकी खिलाफत और उसकी उसका अपोजिशन, उसका अपोज करना बहुत ज़रूरी है.
8: गलत हो रहा है. इमरान खान इसी देश के हैं, उनका भले उन्होंने अपनी नेशनलिटी चेंज कर दिया हो, बहुत सारे लोग चले गए दूसरे मुल्कों में, लेकिन उनको अब देश से मोहब्बत है, अपने उनके बाप दादा की सरजमीन है. अगर उन्होंने आगे कोई टिप्पणी कर दिया तो इतना हार्श कदम उठाना कि वो देश जल्दी से जल्दी देश छोड़ दें, मैं समझता हूँ सरकार की जो नाकामियां हैं वो सरकार उजागर नहीं होने देना चाहती.
1: Okay, so one argument, of course, is that what's the big deal? People keep expressing their opinions about anything. Many would sit in India and express opinion about every thing that is going on across the world in any country. But the other part is, what are the legal procedures, the law of this country? Just a short while back, I spoke to Siddharth Luthra, senior advocate of Supreme Court, former additional Solicitor General of India. Mr. Luthra, I just want to understand what the law says as far as this Imran Khan issue is concerned. He was there.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बट्स एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd एंड 23rd अक्टूबर, न्यू दिल्ली।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
1: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi. This is A World Between Orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर, जेके टायर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स डॉक्टर स्वर्णिम वागले जनरल डेविड पेट्रियस स्वामी सर्वप्रियानंदा माइक वॉल्श निकोलस बक्स

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम 5 विद प्रियंका
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 PM, only on NDTV, when it really matters.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: यार लोन भूल गया मैरी। It's just a good bank ना।
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
3: There's nothing small about
1: us. उज्जीवन, nothing small about us.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्थोर मसाला।
7: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
8: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
9: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर। अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
2: स्मॉल। अब पूरी पिक्चर देख लो।
1: लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
10: कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हुआ है।
11: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटरिक।
12: एनीवन मैसेज ऑफ यूनिट।
13: हमारा स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले तब फांसी दवा तो उची।
14: Also, the police action.
11: Taking questions where they matter most.
15: The question is, language ke baat kare.
11: Urgent, exact, empathetic.
16: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
11: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
17: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create an opportunity or a risk. Because what happens in courts could have a direct impact on your business. Join me as I decode what legal decisions mean for markets, businesses, and investments. Closing argument, only on NDTV Profit.
18: The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October. New. This is A World Between Orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
10: Code of conduct लगाया हुआ है।
11: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
16: Anyone message of unity.
13: हमारा स्वामी जाके जे भाव हत्या कर ले तब फांसी दवा तो उची।
16: Also the police action.
11: Taking questions where they matter most.
15: The question is, language के बात करें।
11: Urgent, exact, empathetic.
16: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
11: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: मैडी, I need to open a savings account.
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business, edge current account business, maxima business privilege, RDA, there's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आके और मसाला।
7: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.